0: And that's why name is also the Joshimath. But he's of course not from that ashram, but from this area. So he will chant on the occasion of the holy Guru Purnima, Guru Stuti, first Swastivachan and the Guru Stuti. So we welcome our Panditji.
1: खड़े हो जाओ इधर
0: हाँ गुरु जी के पास एंड यू कैन पुट द कैमरा ऑन हिम इफ इट इज फंक्शनिंग स्टिल आप तो चालू करो
2: परम सम्मानीय पूज्य पाद श्री स्वामी संजन स्पर्श mantra for peace of everybody who mind, peace of this place, Australia, all country and both.

0: गुरु पूजन करना।
1: हाँ
0: हमारा तो दुष्ट ढंग का है, लेकिन
1: गांधी से ढंग
0: का वही करे। गुरु परंपरा इन इंडिया, वी रिस्पेक्ट ऑल अवर मास्टर्स
1: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग
0: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर टू सी द दर्शन ऑफ गुरुदेव। इट स्टार्ट फ्रॉम द नारायण।

नारायण श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गजानंद भगवान की जय। पहले गजानंद जी की जय बोलनी चाहिए थे, भूल गए। गजानंद जी महाराज क्षमा कीजिए, आपकी सबसे पहला स्वीकार कीजिए। गजानंद जी भगवान की जय। ओ बस लड्डू खाते हैं बड़े बड़े। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, स्पिरिचुअल सीकर्स, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा एंड लाइफ एंड going to the spiritual path of yoga. Yoga. Yoga karam sukoshalam. Bhagavad Gita said, yoga karam sukoshalam. Achche karma, when you do the good karma, karma yoga, then your yoga sadhana will be successful, number one. But to be a successful in yoga sadhana means not that you enter into the Brahmaloka. That's it. There is the key to the Brahmaloka. Therefore it is said, moksha mulam gurur kripa. Finally, the door is there, and who is opening the door is Satguru Dev. Doesn't matter what you do, all kind of sadhanas, yantra, mantra, tantra, whatever you do, puja, anushtan, everything. But finally, is there is coming what's called the Guru Kripa Hi Kevalam. Bhagavan Krishna also said, doesn't matter from which path, from which direction you come, ultimately I am there on that gate. And that he will lead you to the Guru Bhakti and through the Gurudev. Ram Krishna se kaun bade, उसने भी गुरु कीन तीन लोक के नाथ सतगुरु के आधीन। Who is the greatest than Bhagavan Ram and Bhagavan Krishna? They are the God of the all the three worlds. But to come to the Brahma, even Bhagavan Ram and Krishna, all the other incarnations, they have been doing the seva to the Gurudev. Day before yesterday, I was in the Rishi, Sandeep Rishi. Who was the Sandeep Rishi? Where Bhagavan Sri Krishna chote tumhare jaise the, tab school jate the. Kahan jate the? School. To kahin likha to hai nahi, lekin baat hai. Kya hai? Likha to nahi tha. Koi nahi likhte na. Dande to unke bhi pade the. Kiske? Nene Krishna ko bhi danda pada tha bhai. Kaan pakda tha. तो अपने अगर कान खींचे गुरुजी तो क्या, कोई बात नहीं है। जैसे कान खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इस देर से अंदर जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। कान खींचते ही वैक्यूम बनता है। व्हेन योर मास्टर विल पुल योर ईयर्स, इट मींस द होल ओपन्स, वैक्यूम ओपन्स and it sucks in the knowledge. Guruji pakdi choti aur choti kare
चम चम और विद्या है घम घम। गुरुजी पकड़ी चोटी और चोटी करे चम चम, विद्या आवे घम घम, और नहीं पड़े तो डंडा पड़े धम धम धमा धम धम। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, सो

0: श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की सच्चिदानंद भगवान की। सो आराध्य भगवान परमहंस परमहंस परमहंस किसको कहते हैं? वो आत्मा जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, वो ही तो जिसको कहते हैं ब्रजा हवन के साथ में संन्यास दीक्षा होती है, तो दैट समय इज नोन एज ए परमहंस की दीक्षा हुई है। सो द परमहंस इज दैट वन व्हेन यू गेट सेरेमोनी द यज्ञ एंड यू गेट दैट काइंड ऑफ यज्ञ ब्रजा हवन, that time you have a sannyas diksha and you have right to get the title of the paramhansa, that swan of the paramatma brahman, that's it. So Ramakrishna bhagwan paramhansa Ramakrishna was great devotee of the mata kali, and in the temple sometime he used to cry, you have to become like a little baby. Gurudev ke samne, in the front of the Gurudev, in the front of the God, you don't think that you are a great man, you are a director, you are an engineer, you are a prime minister, you are a president, you are a this. In the front of the Bhagavan, you are a Bal. Kya hai? Bal Gopal. एंड जब वो बाल गोपाल को भूख लगी है, दूध पीना है और माँ आई नहीं, तो क्या करता है? वो रोता है, रोता है तो माँ दूध पिलाती है, नहीं रोते तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। यस, सो इवन द गॉड विल नॉट फुलफिल एंड फीड यू विद दैट नॉलेज, दैट ब्लेसिंग्स, दैट एनर्जी, if you don't pray to God with the heart. Virah ki mari ban ban dolu, virah agni. There are many different kinds of the fire. Jata agni, dava agni, havan agni, chitta agni, krodha agni. Kya Maharaj ji? Vaisa hi virah agni. Virah means love. Virah means longing, virah means devotion, burning desires, that's called burning desires. But you can burn into the coal, but nothing will happen. You have to surrender to the Gurudev. So, Paramahansa Ramakrishna, the Gurudev of the a great saint, what you call the Swami Vivekananda ji Maharaj. So Swami Vivekananda ji was known because he went to the many countries and he was a good speaker. But before the Vivekananda, there was a great saint in the Western countries. Yes, many, many. And now there are many Vivekananda, greater than the Vivekananda ji, who is moving in the world. But Vivekananda ji was accepted as a international or a national dignity of the saint as Swami Vivekananda ji, who is a great speaker, great things, there is nothing to say. We worship him. So, Paramahansa Ramakrishna, while doing puja hours and hours, and he was in the temple, Kali temple in Calcutta. कलकत्ता वाली काली काली कलकत्ता काली हाँ सो ही वॉज क्राइंग मदर मदर मदर सो फ्रॉम दैट इट इज सेड आई एम टेलिंग यू आई हैव वॉज नॉट देयर दैट इज आई एम ओनली टेलिंग व्हाट वी हियर वो आपको ही नहीं थे वहां आप वहां थे क्या हाँ नहीं गए पर परमहंस रामकृष्ण को देखा था वहां रोते हुए
1: नहीं नहीं
0: नहीं महाराज नहीं
1: लोग
0: Belur Math में बैठो. So भगवान भगवान ही है. जो आत्मज्ञान हो गए वो भगवान ही है. वो तो ब्रह्म समान है. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Adore, adore, adore, obey, obey, obey thy master, then you will be successful. Otherwise, your knowledge, tons of theory, is nothing compared with the gram of the practice. Chahe kitne hi granth padho, chahe kitne shastra padho, lekin jab tak wo jhalak nahi ho atma ki, ज्ञान नहीं हो तो सब बेकार है. सो परमहंस भगवान राम कृष्ण वॉज प्रेइंग टू माता काली. ही वॉज टीयरिंग कमिंग मदर मदर मदर एंड देन द काली केम. माता केम सी केम आउट ऑफ द स्टेच्यू सी बिकेम ए लाइफ एंड सी took him like a little baby in his lap. That's it. The in front of the God we are little baby. If Guruji will come now out and will take you in your his lap, he will say, no, Guruji, I'm comfortable here. Don't say no. It is you should. That it. There should be no doubt and no differences and no distances. It is said, पार ससंग लोहा किया फिर भी न पलटा लोहा. पार ससंग लोहा किया फिर भी न पलटा लोहा. क्यों? या तो पारस असली नहीं या रहा बीच में बिसोवा. पारस इफ द स्टोन प्रेस इज रेयर वेरी वेरी रेयर बट देर इज ए वन स्टोन कॉल्ड पारस बट वी डोंट नो हाउ इट लुक्स. Maybe there is a lot of Paras stones yogis throwing every day outside after working, you know. Yes. Who knows? To know, that is the something. Paras sang loha kiya, phir bhi na palta loha. Ya to loha asli, ya to Paras asli nahi, ya raha bis mein bhi sova. Kyunki Paras se loha mil jata hai, to sona ban jata hai. लेकिन लगाया फिर भी सोना नहीं बना तो इसका क्या कारण है? या तो बराबर मिला नहीं और या वो पारस असली नहीं. तो जब तक when till you don't become one with the Gurudev, तन मन वचन धन all your knowledge this that you have to merge into the oneness. जब मैं था वो नहीं और वो तो मैं या नहीं है. Why? Prem gali achi saakadi jisme don samaye. When I was here, he was not here. And now he is here, I am not here. Why? Because the street of the love is so narrow. Two cannot go together. Two have to become one. Oneness. Eko brahma dutya nasti. Therefore only one is the Brahman, not the two. So that Gurudev. Finally, काली माता से टू भगवान परमहंस राम कृष्ण बेटा माय सन व्हाट डू यू वांट. आफ्टर फाइनली ही सेड मोक्ष. मोक्ष माता कहती है कि नो हे बेटा तेरे को मोक्ष मैं नहीं दे सकती हूं. सब कुछ देख सकती हूं मोक्ष नहीं. हे माय चाइल्ड आई कैन नॉट bless you to liberate you. No, I can give you everything, but only go to your master Totapuri ji. His master Gurudev ka naam tha Totapuri. Go to Totapuri. He will give you the liberation, the blessings. Then he got the knowledge and liberation from Totapuri ji Maharaj. His disciple Swami Vivekananda after gave the name Saraswati, but Vivekananda is also Puri. Das naam ki puri. So, doesn't matter how much you think that you know, how far you can go, the sky is endless. Go ahead, take off. Take off yourself. अगर मेरी उड़ान देखना चाहते हो तो आकाश को थोड़ा ऊपर कर दो. If you want to see my flight, then lift up the sky. That's it. You can go far as were you, but in nothingness. Nothingness. We don't want to be lost in the nothingness. All our karmas, everything goes behind. Never and never you will be free. Therefore, Guru ka drohi sabse bura, uska kaam hove nahi pura. Jo Guru ka drohi hota hai, uska kaam kabhi bhi pura nahi ho sakta hai, kabhi bhi moksh nahi ho sakta hai. Ek baar aapne Guru kiya, chahe wo Guru gunga, Guru bawla, Guru kaisa bhi ho, tum uske andar mein tumko wo gun dekhna hai, ki ye mere Guru hai, chahe patthar ka bhi ho gaya, to koi ho gaya. So, the moksha is only there and once only. Master, Guru, you cannot change always. You have only mother, one, who give you the birth. You have only one father who gave the birth. But you can call every lady as a mother. You can call every man as a father. But in reality, who is your mother? Who is your father? Only one. And therefore, if you want to get the moksha, you want to get to the liberation, you want to get Atma Jnana, if you want to achieve that what you want to achieve, then surrender to only thy one Gurudev. Dhyana mulam Guru Murti, Puja mulam Guru Padam, Mantra mulam Guru Vakyam, Moksha mulam Guru Kripa. After that, you go ahead with your yoga sadhana. That will help you. That will uplift your consciousness. It will bring you somewhere. But then, jungle mein le ja ke chhod dega. Jungle mein le ja ke chhod dega. All they are the pagdandi. Keval mukhya path to sanatan dharma hai. Highway. That will lead you to your destination. Other are little footpaths. It will lead you far and far, even far in the jungle. At the end, this path will slowly, slowly disappearing, and you go a little far. Who is sitting there? Your uncle. Kaunsa uncle? Lion. Lion beta hai. Yes. Ya sher beta hai. Kaunsa? Sudhar Singh sher. Acha, ajao beta. शेर को देखा कभी टेलीविजन में? वो देखा. तो इसीलिए अवर परंपरा अलकपुरी जी परंपरा व्हिच इज फ्रॉम द हिमालया ऑन हिज नेम इज दैट होली रिवर अलकनंदा. नंदा इज अ देवी लाइक इन बंगाल द काली देवी और in Gujarat, Amba Devi. So there are many different Devis. So in the kingdom of the Alakpuriji, after the Badri Vishal, Badri Narayan, you go far about 8-9 kilometers. That is called the kingdom of the Alakpuriji. And in kingdom of the Alakpuriji is the Kubera. So Bhagavan ka वो क्या कहते हैं ट्रेजर को कोषाध्यक्ष. भगवान का कोषाध्यक्ष जो वो है कौन? कुबेरा. कुबेर इज लिविंग इन द किंगडम ऑफ द अलकपुरी जी एंड देयर इज अलकनंदा निकलता है वो अलकपुरी जी के नाम से. और क्योंकि वहां देयर in the kingdom of the Alakpuri ji, there was a divine mother that's called the Nanda. तो नंदा देवी की पूजा होती है जैसे हमारे राजस्थान में गणगौर की पूजा होती है, पार्वती है। अभी होगी पूजा, लोग जाएंगे, मेला का मेला लगेगा, वो तो वो देवी जो हैं नंदा देवी और अलकपुरी जी, उससे नाम पड़ गया अलकनंदा नदी, जो जाकर के इधर भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही मिलकर के देवप्रयाग में बिकम्स वन रिवर गंगा। बट ऑल्सो ऋषि भागीरथी डिसाइपल, हर नेम वॉज गंगा, एंड दैट्स वाई भागीरथी ऋषि गेव हिज ब्लेसिंग एंड सेड दिस रिवर शुड बी ऑन द नेम ऑफ माई डिसाइपल गंगा। सो गुरु ही एक को ब्रह्मदित्य नास्ति, अदरवाइज इफ यू विल मिस यूज द गुरुज वर्ड्स एंड यू विल बिकम नुगरा, यू विल लीव योर मास्टर एंड देन डेफिनेटली द पनिशमेंट विल बी देयर बाय योर कर्मास। यू लेफ्ट दिस ए ह्यूमन बॉडी एंड नाउ यू डोंट नो हाउ एंड वेयर यू विल कम। देयरफॉर गुरुदेव,

लखपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म गौ माता की जय, सनातन धर्म भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति।

Purnima, and all of you know lot about Guru Purnima. I have been speaking many times and giving the lectures on what means the Guru Purnima. It is the Gu is the darkness and Ru is the light. But that light, which was the darkness, the earth was under the ocean. And Varaha incarnation brought this globe out of the ocean. That time, first time, when there the radiance, the light of the sun and moon, from that side was the Guru, darkness, from the darkness to the light. Now in this modern world, we cannot survive, we cannot do anything without Guru. But Guru means not only some sadhu, not only rishi, but everything who is giving you the knowledge of, for example, how to drive the car, how to ride the cycle, how to write, how to do something, how to cook. Oh my world, 85% in the world people cannot cook. अरे किन्हें खानो बनाना आवी को नहीं? आजकल ठीक है भाइयों हैं जो को हमें एक पाव बहन में लहसुन गाल दो ने, जीरो ही गाल दो ने, आई गाल दो ने, वो ही गाल दो ने, सब्जी में गाल दो ने, मिर्ची डाल दो ने, हल्दी डाल दो ने, आई हुई गियो। अरे आज हमारे भाई यहाँ बैठे हैं बामुन भानु भाई हैं अहमदाबाद वाले, कौन नाम है? धनजी भाई, धनजी भाई क्या जल्दी और किसा प्रकार का बढ़िया भोजन बनाया कि भाई आल में क्या सब्जी मसाला डालना है, बैंगन में क्या मसाला डालना है और टमाटर में और इसके आप रखोगे नहीं गोल गोल आलू और अलग अलग सब्जी के अंदर अलग अलग मसाला होना चाहिए. हमारा तो फॉर्मूला एक ही है, बस एनी मसाला इन हरिओम तत्सत. तो आज देख लो कि 85% लोग भोजन नहीं बना पा रहे हैं. अब इसमें क्या हो गया? व्हाट हैपेंड कि जो महिलाएं जो शिक्षित है बहुत अच्छी है. आज महिला चाहे आज इस युग के अंदर इन दिस वर्ल्ड अगर आपको शांति लानी है तो महिलाएं ही ला सक पाएगी, नहीं तो नहीं होगा. यस लो कोई ताली नहीं बजाओ लोग वास्ते. वाह भाई भले बजाओ, पहला बजाना है थी. लेकिन वो महिलाओं को अहंकार हो गया, मंकार को अहंकार हो गया. बिजली पनीर ने तो आएगी पर वह कह के मैं क्यों रोटी बनाऊं था बनाऊं, तारी माँ ने कह दे वाह बना दे, मैं तो डॉक्टर हूं, हाँ मैं तो बड़ी अफसर हूं, मैं क्यों रोटी बनाऊं. वो महिलाओं का अहंकार के कारण चूल्हा खराब हो गया, चूल्हा की जगह किया आ गया गैस, वो गैस हो गया पेट में, यानी वो क्या हो गया कि एक रेस्टोरेंट हो गया. और रेस्टोरेंट नहीं हुआ तो कोई आजकल ऐसे भोजन बना करके आपके सुपर मार्केट में जाओ लेके आ जाओ और गर्म करके खा जाओ. अब उस बाईसा ने कहीं उठाए नहीं कि उनमें तो कहीं लगाओ, कह कह तो कह टमाटर का वो लगा दो ना, कहीं के वो टमाटर का होता है केचप. वो आदमी क्या कि मैं तो नहीं केचप करूं. तो वह क्या कि दही लगा दो. अरे भाई जो भोजन का है कि बैठना तो छाया में हो बोलो कैर, बैठना भयरे साथ छाई वो वेर,
और खाना तो वही खाना माँ के हाथ का, चाहे हो जहर। तो माँ जो बच्चे को कोक के अंदर से वो उनको न्यूट्रिशन देता है, फीडिंग दैट अपने शरीर से नाभि से, इसलिए वो माँ का भोजन ही दिव्य भोजन होता है, वो प्रसाद होता है। इसलिए लेकिन वो भूल गए, हमारे राजस्थान में तो सब हाल बढ़िया भोजन बनावे सा, मैं आपने क्यों हूं, विदेशारी बातों हैं। अब तो ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं कि मकान के अंदर किचन बनाते ही नहीं है, ग्रोसरी घर बनाते ही नहीं है, नीचे दो तीन रेस्टोरेंट होता है, जो को आ जाओ महीने का उनके ऊपर दे देते हैं ठेका, और आए खाना खाए अपने कमरे में गए हरीसोम। अब उसकी क्या क्या उस खाने पीने में उसका शरीर निरोग रहेगा, कैंसर होगा। सो दैट फॉर इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन हैव टू कुक एट होम देयर सेल्फ बट लर्न फर्स्ट हाउ टू कुक, ये बात है, नहीं तो। सो देयर फॉर इवन कुकिंग इज मास्टर एंड यू हैव टू बिकम ए मास्टर एंड यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो टू बी ए मास्टर। So all my bhaktas who came here from the other countries, and this is in the whole world, ye message ja raha hai, they see you also. So my dear ones, please do two things. Don't put the children in the nursery, and don't get food from the restaurants. Cook yourself, chahe husband cook hai, ya wife, but माता बहुओं या पिता खुद भोजन बना करके खाओ, सस्ता होगा, अच्छा होगा, नंबर वन।

0: श्री अलकपुरी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानारायण भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मा श्री माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी
0: गुरुदेव की जय।

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिव्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री
1: श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज की जय।

0: की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ डी सी सुरंगानंद दिव्यराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो टीवी। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटा इट भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

गगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसे लगी लगन मेरा हो गई मगन।

बोलिए सदगुरु देव की जय, बोलिए मीरा के श्याम की जय। आखिरी एक भजन कबीर दास जी का, चदरिया झीनी रे झीनी या तो राम रंग रस बीनी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो।

शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, आपका धन्यवाद। एक बार इफ यू वांट, थैंक यू।

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर शिवम शारदे कला केंद्र।

सदगुरुदेव को प्रणाम, सभी सज्जनों को प्रणाम। और सुनो, इनफ। धन्यवाद। A little composition written and composed by me. Please hear and entertain, and please peace to God and prayer to our Gurudev. In the words, nothing. झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जी गुरुदेव। मिला,
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी सा हो, सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सब संतन सिर ताजे, सब संतन

अमर मंत्र है ऐसो ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे बड़ भागी जन सुने रो मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे मैं हूँ जैसो को तैसो नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशो नहीं है ओम।

0: गुरुदेव की जय। शांति शांति शांति।
1: आपकी काफी काम काम कर रहे हैं ना?
0: जी जी
1: भी आपका, लेकिन फिर भी आपका बहुत
0: अरे वो अभी पहला मौका है। पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपकी शरण में देश विदेश में आपके आश्रमों में जहाँ जहाँ आप आदेश करो।
2: कमरा दे दिया उनको, कमरा दे दिया।
0: रुकूंगा, आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
3: बोले शंकर भोले, ओ, ओ, ओ शंकर भोले,
0: शंकर भोले। रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी, आई एम प्रेजेंटिंग गुरु शरणम। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, दादा दादा दादा। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, ये सारा जग बोले। जय शंकर भोले,

श्रीप्रणब भगवान की जय। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। महामान्य स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।